0: अध्ययन की नवेफती हो रही
1: मेरी और बड़ा हास वे
0: अनेक काठेस तो क्या रे भी मता मन्ना हाँ द देरा वेफाये
1: आहाने के वार गया कुछ जाए आरे न माला में कुरने
0: हास नो अब स्पेल द टी प्रोग्राम अडवे ही मती कहला हुरी हाँ कंका मंगा लो हो दंगे ना
1: स्पेल द टी है
0: Mikaala kankan dimaaveema kanta kura vidana goetan e programu nge gelne.
2: Spill the tea. Hame gani divehi raajya gaadu.
3: Aditta dua hoge haveero hatra gadi fanaraga.
4: Repeat. Buddha dua hoge haveero hatra gadi fanaraga.
3: Adi budaaspati dua hoge haveero fahed zahaydu.
0: Engha sataristeka saalis 9 kilohertz medium wave. अधे अड्डिया 9 मेगाहर्ट्ज एफएम बैंड हमें कन दिवही राज्य गाडू इंतजार कोल्लावा
5: स्पिल द टी

0: जादू के राज। इंहा सतर से कसालिस नुए किलोहर्ट्स मीडियम वेव अड्डी हनुए मेगाहर्ट्स एफएम बैंड
1: दिवे राज्य के अड्डू

काफिर वे मी हूँ मकर वे रे नुबै रे उन तर रे वे अल्लाह एवरेंगे रे उन तब बापल खुरबा एवरें डक्के ही लिबे ने गुता तदबीर खुरबी अल्लाह ही मकर वे रे नवरे तदबीर खुरबुम मलो रसलांगे।

ग्रीक अल्फाबेट का सबसे पहला अक्षर और हमारे प्रोग्राम का मोटो, सबसे पहले, सबसे तेज, सबसे वीर। ध्यान से देखो तो हर शहर में एक जंगल है और जंगल में हमेशा राज करेगा।